सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

मेरा नहीं कह सकते। जीवन के संस्कार शूद्र जीवन के संस्कार।

Madonna. संस्कार जिनको आप पुराने कहते हो वो भी पुराने नहीं है, आप श्रेष्ठ आत्माओं के पुराने ते पुराना संस्कार संस्कार। ये तो द्वापर मध्य के संस्कार, तो मध्य के संस्कार

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: एकाग्र कर सकते

0: सेकंड में क्या से क्या हो जाएगा। इसलिए बाप दादा पहले से इशारा दे रहा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: हिम्मत सदा कायम है, क्योंकि हिम्मत दे बच्चे

0: और आपका इस समय के प्रमाण कार्य विश्व के संकल्प को समाप्त करना है, तब दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति का अनुभव करा सके। बाप दादा को दुखी बच्चों को देख तरस पड़ता है। आपको भी अपने भाई बहनों को देख तरस तो पड़ता है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज करके देख, पीछे आता है, जब बीत जाता है और मन को अच्छा नहीं लगता, अचानक के खेल होने कई बच्चे बाप को भी बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते, कहते हैं कि समय थोड़ा और
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Junkie.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Essay.

सभी का अटेंशन, मैं जर टीका हूँ।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी वर्तमान समय के हिसाब से

siate però, man, what is unscrupulous.

me vale ese meme. Posso eu ter...

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जय विदेश जी, जय भारत वंश है तो दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे, इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। श्रम हिम्मत को इमर्ज करो, हिम्मत समय हुई, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान होना पांडव है। अभी मन से भी सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। बाप दादा को खुशी है, नास है कि मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजय, एक बार नहीं अनेक बार की विजयी आत्माएं। पीछे वाले बच्चे विजयी हो, हाँ विजयी हो, हाँ ये कुर्सी वाले बच्चे कुर्सी पर बैठे हो, अच्छे
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सेवा

विश्व कल्याणी का स्वरूप।

0: Chiaro. Desvideschi.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा सभी के लिए कहती है कि बीच बीच में समय निकाल के, चाहे पुराने चाहे नए, सभी को अशरीरी बनने का ड्रिल जरूर करना है, क्योंकि आने वाले समय में सेकंड में अशरीरी बनना ही पड़ेगा। तो ये ड्रिल कोई के समय नहीं मिला, कितना भी कोई बिजी हो, पानी की प्यास लगती है, क्या पानी पीने नहीं उठेंगे? जरूरी समझ के उठेंगे ना। तो ये एक मिनट अशरीरी बनने की ड्रिल, ये प्रैक्टिस जरूर करो। उस समय प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, कहीं समझते हैं ना समय आएगा कर लेंगे, लेकिन नहीं। ये जन्म जन्म का बॉडी कॉन्शियस का अभ्यास उस समय अशरीरी बनने नहीं देगा, इसलिए अभी से कोई भी समय निकाल, सारे दिन में समय प्रत समय जो भी निश्चित करो, एक सेकंड में अशरीरी आत्माओं आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाए। बॉडी कॉन्शियस अपने तरफ खींचे नहीं, ये अभ्यास सभी को करना है, चाहे पुराने चाहे नए, क्योंकि बाप दादा ने कुछ समय से ये बात कही है, लेकिन
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जैसे अपना

कुछ स

Shake. Boleh muncak aja. Siapa?

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज कल जिस सने की शक्ति से वो स्वयं परिवर्तित हो जाए, ऐसे
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सफलता स्वरूप ही सफलता है।

असफलता की बात को भी सफल

0: ज्यादा सफलता स्वरूप हूँ। ये आज के दिन का बाप दादा का वरदान। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। ये सदा स्मृति में रख, तो जो भी कुछ सफलता स्वरूप बनना, तो अमृत वेले का सफलता मेरा जन्म सिद्ध कार्ड। इसको रोज स्मृति में रखना और प्रैक्टिकल में अगर कोई भी बात आवे तो सफलता के वरदान को याद करना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अब दादा सभी बच्चों से यही चाहते प्यार का सबूत, समान बनने का दिखाओ, सदा संकल्प में समृद्ध हो, अब व्यर्थ की समापति समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समृद्ध बनने नहीं देंगे, और जब तक आप निमित्त बने हुए बच्चे सदा समृद्ध नहीं बने, तो विश्व की आत्माओं को समृद्धि कैसे दिलाएंगे? सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हो, शक्तियों के भिखारी बन चुके, ऐसे भिखारी आत्माओं को ये समृद्ध आत्माएं बेकारीपन से मुक्त करो, आत्माएं आप समृद्ध आत्माओं को पुकार रही है, मास्टर मुक्ति दाता, हमें मुक्ति दो, क्या ये आवाज़

0: Astral Mukti Tatapan Desi. Swim. Kicho dicho di pato se. Sutai mukto jai.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: देखो परिवर्तन तो होना है ना, तो प्रकृति भी अपना काम तो करेंगे ना। जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को तमोगुणी बना दिया तो वो अपना काम तो करेंगे ना, लेकिन हर खेल ड्रामा के खेल में ये भी खेल है। खेल को देखते हुए अपनी अवस्था नीचे ऊपर नहीं करना, परिस्थिति मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की स्वस्थिति को प्रभाव नहीं डाल, और ही आत्माओं को मानसिक परेशानियों से

0: Ivan Katantina, Sayog din, Jesse Aglagdier, तो आग बुझाने वाले डरते नहीं है, बुझाते हैं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

bare ligge på den. Yeah.

Popcorn.

Yo kebab dadah.

0: 就是的。
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: और आप सोचो, ब्रह्मांड आत्माओं की निजी संस्कार कौन से? क्रोध या सहन शक्ति कौन सा है? सहन शक्ति शांति, ये है ना। तो अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट के अंदर डाल दिया है, जो न चाहते भी निकलता रहता। ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट के संस्कार बनाओ, मेरा निजी संस्कार याद रखो। वो तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, पराए माल को अपना बना लिया, पाप के खजाने को भी पाप अच्छा लगता है, यही कह रहे हैं ना मन में। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। जब कोई रावण के संस्कार के वश होती है और फिर भी कहता रहता है, बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार। आप पूछते हैं कितना प्यार है, तो कहते हैं आकाश से भी ज्यादा। बाप सुन करके खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे

फिर भी बाप कहती है कि बाप का सभी बच्चों से वायदा है। जब बाप कहा मेरा बाबा दिल से, अगर एक बार भी बोल दिया फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा तो बाप भी कहते हैं जो भी हो जैसा भी हो

0: ये तो जाना ही है। सब बाप चाहते हैं कि बराती बन के नहीं चलना, सजनी बन के चलना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा, ये रायल रूफ के मैमे के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वो ही ठीक है, मैंने जो सोचा वो ही ठीक है, वो ही होना चाहिए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज हिम्मत और उमंग उत्साह सदा कायम रहे, इसी की आवश्यकता है। तो सभी को जो भी सामने आए,

Cessane lady. Chase yog lady. Chai mat lady. Chai womang lady. Kuch na kuch le jaave. Kyunki tata ki bachi. वैसे तो सभी का काम ये है, कभी भी किससे मिलते हो, कोई मिलने आता है खाली हाथ नहीं जाए, चलो दृष्टि

स्नेह, सहयोग, हिम्मत फैलाएं।

सभी की भ्रमण जो अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं उनको ऐसे ही सेवा में बिजी रहना। Sorry.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वचपोड़ी से करने वाले का सदा नहीं होगा, कभी कभी होगा। दिल से करने वाला
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा को सबसे समीप रतन वही लगता है जो सफाई और सच्चाई में दिल साफ और सच्ची दिल वो बच्चे चाहे कितना भी दूर हो लेकिन वो सबसे समीप बाप दादा के दिल पर रहते। इसलिए इस विशेषता को सदाई सामने रख अपनी विशेषता को बढ़ाते रहना। ये समय पाने का बहुत सहज साधन वैसे तो सभी के लिए है, भारतवासियों के लिए भी, लेकिन डबल विदेशों में मेजॉरिटी में ये विशेषता है। आप इसी विशेषता को अपने भी और अपने में भी बढ़ाओ और बढ़ाते बढ़ाते समय आते आते समान बने टीचर्स।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पर पुरुषार्थ थी

del Quito a Elena. Rosa Bradwell.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आजकल की मोरली

0: इज्जत बढ़ाए, इसलिए अटेंशन बढ़ाए तो टेंशन संस्कारों का कम होता जाएगा। बाप दादा ने पहले भी कहा, जब भी टेंशन आवे ना ए लगा दो, बस ऐड कर दो ए अटेंशन। चलना तो सबको आई, ये तो वायदा है ही पक्का, साथ चलेंगे साथ राज करेंगे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सा

See.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज सम्राट बाप अपने समृद्धि स्वरूप सम्राट स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में सने की लहर लहरा रही है। विशेष Watch. इस विशेष स्मृति दिवस में अर्थात शनि के दिन में शनि में समय रहे ऐसे समय रहो तो मेहनत का पुरुषार्थ करना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Tchau.

Three.

मन है। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इस वर्ष में बाप दादा विशेष एक शक्ति का वरदान भी दे रहे। मेरा बाबा कहेंगे तो शक्ति हाजिर दिल से। ऐसे ही मेरा बाबा ने दिल से कहा, अधिकार रखा मेरा बाबा, और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाए। परिवर्तन की शक्ति में विशेष नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर, नेगेटिव संकल्प चलन को देखते हुए पॉजिटिव में चेंज करो। पॉजिटिव देखना, बोलना, करना सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सहज हो जाए, क्योंकि ये अपोजिशन आएगी, लेकिन आपके परिवर्तन की शक्ति आप सहज सफलता दिलाएंगे। तो समझा, इस वर्ष का विशेष वरदान परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य सर्वशक्तिमान उसके आगे मुश्किल किया, लेकिन आप एक गलती करते हो और मुश्किल बना देते हो। जैसे देखो अचानक या sweet। से बात बड़ी कर देते हो और बड़ी बात तो मुश्किल होती।

0: तो सहज विधि कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत सहज बताई है। अपन ने मास्टर सर्वशक्तिवानों इस स्मृति के सीट पर बैठ जाओ। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो अपसेट नहीं होंगे, बिना सीट के अपसेट होते। सीट है तो अपसेट।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी बाप दादा के वरदानों को अमर बनाने के लिए सहज विधि ये अपनाओ के अमृत वेले और साथ में कर्म योगी बनने के समय भी बार बार वरदान को रिवाइज कर स्वरूप स्वरूप में स्थित करो, बार बार रिवाइज करो। बाप दादा तो दे देते हैं वरदान, लेकिन वरदान को कायम रखने के लिए बार बार रिवाइज करके स्वरूप रूहानी

0: संगम का वरदान जन्म जन्मांतर साथ रहते, इसलिए वरदान को स्वरूप में लाते रहेंगे तो वरदान की सफलता का अनुभव करते रहेंगे। बुद्धि में नहीं, सिर्फ स्वरूप में लाओ। उस नशे में रहो,
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: समझ लो, बातें नहीं आएगी, बातें आएगी, लेकिन अपना लक्ष्य लक्ष्य में लाना है। घबराना नहीं, तो जैसे अभी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां पवित्रता का बहुत पाठ पढ़ाती, ऐसे प्रसिद्ध हो कि ब्रह्मा कुमारियां क्रोध मुक्त बना दी। क्योंकि क्रोध से मुक्त होना सब चाहते, इसलिए सभी चाहते हैं, लेकिन उनको विधि नहीं आती। जैसे पवित्र बनना असंभव समझते थे, आप सबके अनुभव के आधार से समझते हैं कि हो सकता है। ऐसे अभी इस वर्ष ये लहर फैलाओ कि क्रोध जीत मुश्किल नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल के अनुभव प्रैक्टिकल में स्टेज पर लाओ।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

समान भाव जल्दी बन सकते।

tu api. Sí.

Seul. Sădai. Cartecelor.

Срана кой. И се и

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने कई बार इशारा दिया कि समय अचानक

0: Sugar. कितना भी बिजी हो लेकिन बिजी होते हुए भी एक सेकंड समझते हो प्यास लगी है तो पानी पीना जरूरी है। ऐसे बीच बीच में अशरी बहुत काल का अभ्यास नहीं करेंगे। तो अति हलचल समय अचल कैसे रहेंगे? सारे दिन एक दो मिनट निकाल के भी चेक करो कि समय प्रमाण आत्मा की स्थिति द्वारा
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हंसी की ये बात है तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, और बाप दादा देख करके बाप को रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते, कभी कभी मेहनत बहुत करते, और कहते क्या है क्या करे, मेरे संस्कार ऐसे। संस्कार के ऊपर ही कह के अपने को हल्का कर देते, लेकिन बाप ने आज देखा कि ये जो कहते हो आप कि मेरा संस्कार है, तो क्या संस्कार क्या है? और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से है? जिसको आज आप मेरा कहती हो वो मेरा है या रावण का है? किसका है? तो आज से ये नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं, यह हवा में किचरा आ गया है, और क्या जाते है ना कभी, तो ये रावण की चीज आपके पास आ गई, तो उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा है, है मेरा है,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी सेवा शुरू करते हो, चाहे देश में चाहे विदेश, बाप दादा यही कहती है कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता साथियों में, सेवा में, वायुमंडल जैसे नारियल तोड़ के उद्घाटन करते हो, रबन काट के उद्घाटन करते हो। पहले इन चार बातों के रबन काट और फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो, ये पानी डालो धरनी में, जो भी कार्य की धरनी है उसमें पहले ये नारियल का पानी डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती। नहीं तो कोई ना कोई विघ्न जरूर आता। सेवा सब करते हो लेकिन नंबर बाप दादा के पास रजिस्टर में नोट उसका होता है जो निर्विघ्न सेवाधारी। बाप दादा के पास ऐसे सेवाधारियों की लिस्ट है लेकिन अभी बहुत थोड़ी है, लंबी नहीं। भाषण करने वालों की लिस्ट भी आपके पास लंबी है। बाप दादा उसको भाषण करने वाला कहता है जो पहले भाषण दे सबको फिर भाषण। भाषण तो आजकल स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियां बहुत अच्छा करते हैं, तालियां बजती रहती है, लेकिन बाप दादा के पास लिस्ट वो है जो निर्विघ्न सबकी प्रसन्नता संतुष्टता वाली।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज की दुनिया में मेजॉरिटी आत्माएं देखने और सुनने से थक गए, लेकिन अनुभव
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अमृत वेले से लेके जब उठते हो तो परमात्म प्यार में लवलीन होके उठते हो। परमात्म प्यार उठाता है दिनचर्या की आद। परमात्म प्यार होता है, प्यार नहीं होता सकते। प्यार ही आपके समय की कंठिया, प्यार की कंठिया

0: साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेला नहीं है, अकेले सोते हैं तो बुरी स्वप्न व बुरी ख्याल स्वप्न में भी आती, लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहती है मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। तो उठे उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो, तो भी बिजनेस का आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक बाप है। दफ्तर भी जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर पास बाप दादा है, ये निमित्त मात्र उनके डायरेक्शन से काम करते। कभी उदास हो जाते हो तो बाप फ्रेंड बन के बहलाते, फ्रेंड भी बन जाते हैं। कभी प्रेम में रोते हो आंसू तो बाप पूछने के लिए भी आते हैं। और आपके आंसू दिल के डबी में मोती समान समा देते। अगर कभी कभी नटखट हो के रोज भी जाते हो, रोजते भी हो बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रोसे हुए को भी मना आते। कोई बात नहीं बच्चे, आगे बढ़ो, जो कुछ हुआ बीत जाओ, भूल जाओ, बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी। तो हर दिन चिड़िया किसके साथ है?
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सिक्किया बहुत नहीं दो कि मैं करूं, सिक्किया देने में एक दो को भी समोचार, लेकिन कि मैं के साथ सिक्किया दो। मुरली सुनाने कोर्स कराने या जो भी आप प्रोग्राम्स चलाते हो वो भले सिक्किया दो, लेकिन आपस सिक्किया दो तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरे का कमजोरी की किमिया हो जाएगी। समझा?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: चेक करो ज्ञान स्वरूप बनाओ या ज्ञान सुनने और सुनाने वाला बनाओ। ज्ञान अर्थात नॉलेज।

ज्ञान स्वरूप बनना। योग स्वरूप का अर्थ है घर में इंद्रियों चीत बनना। हर घर में इंद्री पर स्वराजदारी, इसको कहा जाता है योग अर्थात युक्ति युक्त जीवन। इससे अगर ज्ञान योग का स्वरूप है तो हर गुण की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। जहां ज्ञान योग है, योग युक्त है, वहां गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली हो। सेवा हर समय ऑटोमेटिक होगी। समय अनुसार चाहे मन सा सेवा करे, चाहे वाचा करे, चाहे कल्पना करे, चाहे सने संबंध

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा फेरत संकल्पों की सभापति करने के लिए सभी चारों ओर के बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं कि अभी से फेरत को समाप्त कर सदा समृद्ध बनाओ। सिर्फ संदेश नहीं, समृद्ध बनाओ, समृद्ध बनाओ, समृद्ध बनाओ। व्यर्थ को समापत्ति दिवस बनाओ। हो सकता है जो समझते हैं कि व्यर्थ संकल्प अपने को भी नुकसान पहुंचाती है, समय बर्बाद करती है, चेहरे पर सदा खुश नेमा खुश किस्मत का अनुभव कम कराता है। इसलिए अब इस समापति का समय लाना है। किसको? आपको ना, जो समझते हैं कि अभी समापति के समय को समीप लाना है, उसके लिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है, करना है नहीं, करना ही है, स्वप्न में भी नहीं है। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं है। ऐसे हिम्मत वाले बच्चे जो अपने को समझते हैं वो हाथ उठाओ। मन का हाथ उठा रहे हो ना, भाई का हाथ तो बहुत ईजी है, लेकिन मन का हाथ उठा रहे हो। जो मन का हाथ उठा रही है वो हाथ उठाओ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: दादियों ने डबल विदेशों को भी मर्ज किया, डबल विदेशी उठो, Yeah.

0: vocês. Tati, o quê? Pode ler. Tati, querida. Tu tá de legal. Que mochê.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

nobody knows that they care.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

कैसे करूं, क्या करूं, नहीं।

चाहिए।

Mischief.

सिर्फ रूप थोड़ा चेंज कर

Neštěp.

Jsem tam ty.

अच्छे बनाते हो। बाप दादा जब रोड़ियां सुनते हैं, रोड़ियां बहुत हिम्मत की करते हो। Shit.

Adiós.

0: Sor Sangalamba emerge naked.
1: Shut up.

is at God's say. Yeah.

sick.

0: Σάρακο. Τι ωραία.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहां है खुशियों का संगम.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वर्णन भी करते हो, जैसे संपन्नता का समय समीप
2: दिखाई दे।

Yes.

Arf, ist das so?

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है, और आपने समझाने के लक्ष्य से, और कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य आपका बहुत अच्छा है, किसको सी

क्योंकि वर्तमान समय से सेवा करते हो

ऐसे समय पर आप सबको चेहरे और चलन से ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

अपने पन का एहसास, अमर है बाबा तेरा मेरा प्यार, युग युग में ना छूटे बाबा बस तेरा सा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सबने अपना अकाउंट रखा, जिन्होंने एक्यूरेट अपना अकाउंट रखा है, नियम पर मान काम चलाओ नहीं, यथारत रूप से हिसाब से नहीं, जैसे एवरेज निकाला जाता है ना, ऐसे भी रखा है।

qué fuerte.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप शिवा के बिना रहता है, याद के बिना भी नहीं रहता। जितना बाप याद में रहता उतना आप मेहनत से रहते हैं, लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। और बाप के लिए है क्या, परम आत्मा के लिए है, आत्मा है, नंबर वन आत्मा है, तो है स्वयं बच्चों के याद के बाप रह नहीं सकता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज की बात व्यर्थ संकल्प के समापति की भूल नहीं जाना, बाप दादा के पास रिकॉर्ड तो पहुंच ही जाते, तो बाप दादा देखेंगे कितने तीव्र पुरुषार्थी बच्चे और एक दो को भी उसकी गलती का मन में संकल्प करते हो, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये भी खत्म करो, उनको सहयोग दो, श्रेष्ठ भावना दो, ऐसी सेवा करते सारे संगठन को श्रेष्ठ संकल्प वाले बनाना ही है, कोई से

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

advertite.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: वैसे अभी शिवा से लगन है, ये बाप दादा ने देखा है कि शिवा से लगन अच्छी है। सेवा के लिए एवरेडी है, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए एवरेडी है। लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो, वाणी के साथ साथ समाप्त कर अपना राज लाए।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सत्युग में या मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम पर ही करना है। जीवन में रहते समय नासिक होते
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: उस समय मुस्कुराती है, कहती है देख लेंगे क्या होता है। तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है। गाना आज क्यों सुना रही है, क्यों चाहो नहीं चाहो, जबरदस्ती भी आपको बनाना तो है और आपको बनना तो पड़ेगा ही। आज थोड़ा सत सुना दिए, क्योंकि आप लोग प्लान बना रहे हो, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा तो टेम्पररी हो जाएगा, फिर कोई बात आएंगे ना कहेंगे। बात ही ऐसी थी ना, कारण ही ऐसा था, मेरा हिसाब किताब ही ऐसा है। इसलिए बनना ही पड़ेगा, मंजूर है ना।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: वर्तमान समय

సంకల్ప విక్లప్ నై వ్యర్థ సంకల్ప దూసరా భీ సునాయేగా Yeah.

Skin.

0: कुछ समय से चल रहा है कि अचानक होना है तो अचानक होना है, और अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं हो अचानक के समय अभ्यास की आवश्यकता है ना। अभी अभी देखो, बाप दादा ने होमवर्क दिया 10 मिनट, टोटल 24 वाड़ी, 10 मिनट का होमवर्क दिया, तो कई बच्चों को मुश्किल हो रहा है। तो सोचो, अगर 10 मिनट
1: अचानक में उस समय

0: कि 24 वारी में कईयों को समय थोड़ा कम मिलता है, लेकिन बाप दादा ने ट्रेल की के 10 मिनट एक ही स्मृति में जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। बाप दादा ये नहीं कहते अभी भी 10 मिनट करो, अच्छा नहीं हो सकता, जिसको हो सकता है वो करे, अगर नहीं हो सकता है तो 5 मिनट करो, 5 मिनट से 7 मिनट 6 मिनट जितना भी बढ़ा सको उतने ट्रायल करो। बाप दादा खुद ही कह रहे हैं इसमें ऐसी बात नहीं है, अगर 10 मिनट ज्यादा टाइम लगता है तो चलो 8 मिनट करो 9 मिनट करो, जितना ज्यादा कर सको उतने आदत डालो, क्योंकि अभी भी बहुत काल का वरदान प्रैक्टिकल में अभी कर सको। अगर अभी बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अभी के बहुत काल का पुरुषार्थ का जो प्राप्ति है आधा कल्प की, उस बहुत काल में फर्क पड़ जाए। कम समय देंगे जितना हो सकता है उतना, बाप दादा ने छुट्टी दे दी है, अगर 5 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता है तो 7 मिनट करो 8 मिनट करो, 5 मिनट की भी आज तक भी छुट्टी, लेकिन अगर कोई भी समय 10 मिनट हो तो अच्छा, ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए और विश्व के लिए भी किराए देने पड़ेंगे। इसीलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं, जितना ज्यादा समय कर सको उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी का बहुत समय भविष्य का आधार। ठीक है, मुश्किल लगता है ना, कोई बात नहीं है, अभी तो कोई अर्जा नहीं है। और बाप को सुनाया ये बहुत अच्छा की, क्योंकि मानो 10 मिनट बैठ नहीं सको, सोच में ही चला जाए तो 5 मिनट भी गए। इसीलिए बाप दादा की कम से कम 5 मिनट से कम नहीं करना, जितना बढ़ा सको उतना बढ़ाओ। ठीक है, स्पष्ट हुआ, हुआ स्पष्ट, क्योंकि बाप दादा हर एक को बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा ने इसकी निशानी है हर एक बच्चे को कितने स्वमान दिए।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा को ये जो परिवार की बात है, उसमें कभी कभी बातें सुननी पड़ती, देखनी पड़ती। एकदम बड़ी दिल लो, सबको शुभ भावना शुभ कामना से ठीक करना है, क्योंकि परिवार एक एक मत होके चलना है, चलाना है, सिर्फ चलना नहीं चलाना भी। इसलिए बाप दादा इस बात पर अटेंशन दिला रही है कि परिवार में जो किसी भी हलचल में पास हो जाते हैं, व्यर्थ नहीं चलता, चलाना है। जैसे बाप दादा ने अभी तो आप अपने अपने सेंटर पर कितने चलते हो, चलो ज्यादा में ज्यादा 25-50 इतने होते नहीं है, लेकिन मानो बड़े स्थान है उसमें भी 50-60, अच्छा 100 भी समझो ज्यादा में ज्यादा। इतने नहीं है लेकिन समझ लो। तो बाप दादा तो सभी सेंटर्स के बच्चों को लास्ट को भी अपना प्यारा कह के चले, और प्यार की निशानी है रोज बाप दादा याद प्यार क्या देता, मीठे मीठे जानता है खट्टे भी है। लेकिन मीठे खट्टे कभी याद में कहा है, उन्हों को भी लाडले कहते हैं। नसरब कहते हैं लेकिन मेरा बच्चा मेरे पाँव से चलाते हैं, क्योंकि बता दिया कि ड्रामा में माला में सब एक नंबर नहीं है, ये रिजल्ट है। संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, होना है, नहीं तो सब राजा बन जाए, प्रजा कौन बनेगा, राज किस पर करेंगे। अच्छी प्रजा भी तो चाहिए ना, रॉयल प्रजा, राजधानी है ना। ऐसे हर एक अपने को जी करे। परिवार में किसी भी बात में संस्कार खराब है, लेकिन मेरा संस्कार क्या, अगर खराब को देख मेरा संस्कार भी खराब हो गया तो मैं तो खराब का हो गया जो अच्छे को भी बदल लेता है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने पहले भी सुने कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने कारण एक बात अच्छी नहीं लगती, वो है मेहनत बहुत करते। अगर दिल साफ हो जाए मेहनत नहीं, दिलाराम दिल में समाया रहेगा और आप दिलाराम के दिल में समाए हुए रहे। दिल में बाप समाया हुआ है माया की, किसी भी रूप की, चाहे सूर्य रूप हो चाहे रायल

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Iniciator, fellow, जवाब की प्रकृति सूर्य की शक्ति सता भी है, पानी सुखाता भी, दिन से रात, रात से दिन, करके दिखाता फैला सा।

स्वरूपको इमर्ज करो, किरणें फैलो, सकाश फैलो, जैसे

sit up.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: मेहनत से चुरा देता है, जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती। सदैव सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। सदैव याद में लव सीन रहे। तो बाप दादा कहते हैं और कोई बुशारत नहीं करो के सागर में समा जाओ। कभी कभी बच्चे अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते हैं, बस अब थोड़ी सी है। जैसे कोई डुबकी लगा के निकल आता है ना, ऐसे सने में समाया डुबकी लगाई निकल। समा दे रहो परिवर्तन किया। अपने जन्म की आद का समय अनुभव याद है ना, ज्ञान और योद्धों

0: Satwa. शनि की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। वैसे भी मुक्ति वर्ष मना रहे हैं ना, तो मेहनत से भी मुक्त उसका साधन है शनि में समाया हुआ है। शनि का अनुभव सभी को है ना कि नहीं है? अगर किसी से भी पूछेंगे कि बाप से बाप दादा सिस्टर ने सबसे ज्यादा किसका है, सभी हाथ उठाएंगे मेरा है, ऐसे ना है ना? है। पीछे वालों का भी है हाथ उठा रहे, साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज वाला नहीं है सबका। तो बाप दादा आज यही कहते हैं शनि की शक्ति सदा कार्य में लगाओ, सहजना योग लगाते हो भूल जाए, देखी दुनिया भूल जाए, माया जीत बने। जब शनि की चंद्र छाया में रहेंगे, शनि की चंद्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती। शनि की साखट से बाहर आते हो ना तो माया लेती है और अपना बना देती है, निकलो ही नहीं, समाए रहो। शनि ही कोई भी कार्य करते हुए शनि को नहीं भूल सकता, शनि में खोया हुआ हर कार्य करता। जैसे आज के दिन कोई नहीं, ऐसे सदा शनि में नहीं रह सकते हो क्या? morning, someone said for nothing. You just kiss that son here. What's just happening now? ये मुश्किल नहीं होता.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: इन्होंने 5 दिन फुल स्टॉप लगाने की पट्टी की और पांच ही दिन लगातार कोई भी मिस नहीं हुआ। आत शुरू भी की और अंत तक आपके सामने, तो ये पुरुषार्थ अच्छा किया। ऐसे आप लोग भी ग्रुप ग्रुप बना के अंदर ही अंदर पुरुषार्थ, चलो दो जने हो सेंटर पर, कोई एक सखी को साथ बना दो और अपने बड़ी को सुना दो। तो क्या है, पट्टी करेंगे ना, विशेष नियम बनाएंगे तो उसका मदद मिलेगी। तो बाप दादा को अच्छा लगा। अभी सहज पुरुषार्थ हो गया ना, अभी वहां जाके भूल नहीं जाना, बातों में नहीं आ जाना, फुल स्टॉप में नंबर 1 लेना।
4: दूसरों को कराएंगे,
5: जाके कराएंगे।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: इसीलिए बाप दादा सच

0: पाते हो तो इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो। ये सृष्टि मंच ड्रामा है, तो ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया, उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है? बिंदु। इसलिए तीन बिंदु सदा याद रखो। सारी कमाल देखो, आजकल के दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? पैसा। पैसे का महत्व है ना, माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। उसमें भी देखो, अगर एक के आगे एक बन जाएगा ना, दूसरी बिंदी लगाओ 100 हो जाएगा, तीसरी लगाओ तो बिंदी की कमाल है ना। पैसे में भी बिंदी की कमाल है। और श्रेष्ठ आत्मा बनने में
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

ऐसे तो नहीं, कभी आप मन के मालिक होते वह कभी मन आपका मालिक होता। क्यों

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी कहते तो है मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, जब दिल से जो

मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। दूसरा मैं जो सुना है, मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ठीक हूँ, ये मैं इसको खत्म करना, ये देव महान इस रूप में आता है। तो आज बाप दादा ने ये महीन में जो कभी विशेषता को भी मेरा मान कर मैं का भान रखते हैं, इसको समाप्त करना क्यों ढूंढा, क्यों बकरा मैं करता है। भक्तों ने काफी तो बहुत अच्छी

0: Casa teu, porta-te para eu, porque tu coiso gato de guerra. Tu papo orso gato neite.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

उस समय चिड़चिड़ा बनाते।

चाहते ना, इसके लिए छुट्टी है, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदले नहीं कर। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन भी आता है। वह मुख से Get out.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: खुशी में नाचते भी रहना और दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना, साथ में जो भी संबंध संपर्क में आए उसको कोई न कोई गिफ्ट देना, कोई हाथ खाली नहीं जाए। कौन सी गिफ्ट देंगे? आपके पास गिफ्ट तो बहुत है, गिफ्ट स्टॉक है। तो देने में कंजूस नहीं बनना, देते जान फ्राक दिल बनना, किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो, किसको कोई कोर का गिफ्ट दो, मुख से नहीं अपने चेहरे और चलन से। और किसको चलो कोई गुण इमर्ज नहीं भी हो, शक्ति इमर्ज नहीं भी हो, तो कम से कम छोटी सी सौगात भी देना। वो कौन सी शुभ भावना और शुभ कामना है? शुभ कामना करो कि ये मेरा सोचेंगे तो अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाए। इस भाई बहन का भी औरती कला का पाठ हो जाए। इसके लिए सहयोग व शुभ भावना। कई बच्चे कहते हैं कि हम देते हैं वो लेते नहीं। अच्छा, शुभ भावना नहीं लेते हैं, कुछ तो देते हैं ना, चाहे अशुभ बोल आपको देते हैं। अशुभ वाइब्रेशन देते हैं, अशुभ चलन चलते हैं, तो आप हो कौन? आपका ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व परिवर्तक हो, सभी विश्व परिवर्तक है। धंधा आपका क्या है? विश्व परिवर्तक है ना। लूं कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वो ही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से
2: What's
1: सो मनाती हो तो कहती है मुबारक हो, अगर आप जो भी सामने आवे मुख से ऐसे शब्द बोलो बोलो।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: यज्ञ में हर एक का पाठ अपना अपना आवश्यक है। कोई भी एक्टर निमित्त सेवादारी अगर मिस होता है तो ऐसे नहीं मालूम नहीं पड़ता है। हर एक का पाठ अपना अपना महत्व का। कोई का भी पाठ अगर मिस हो जाता है तो फर्क पड़ता है। ये बाप का वरदान एक एक कामन पाठधारी को भी जैसे बनना डिवाली है तो कामन बात, लेकिन बनना डिवाला नहीं हो तो काम नहीं चले। सफाई वाला नहीं हो तो भी काम नहीं चले। और क्लास कराने वाला नहीं हो तो भी काम नहीं चले। हर एक एक्टर को जो पाठ मिला हुआ है उसको समझना चाहिए कि मैं भी विशेष निमित्त हूं। ड्रामा ने हर एक को चाहे छोटा सा कार्य लेकिन वो भी जरूरी है। पांच अंगुलियां है, एक अंगुली भी मिस हो जाए तो फर्क पड़ेगा। तो यज्ञ की यही विशेषता है, जो भी जिसको पाठ मिला है ना वो बहुत बहुत बहुत जरूरी।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कोई भी बात आवे ना, आप नहीं कर सकते हो, हिम्मत थोड़ी कम है, तो इसरा पाप को जो अपना हिम्मत कम करने वाली आत काम है ना, वो बाबा से सुपुर्द कर दो, बाप को दे दो, बाप ये मैं नहीं कर सकती हूँ, आप ले लो, मैं ये संकल्प में भी नहीं लाऊंगी, ऐसा करना पड़ेगा, बिल्कुल उसको संकल्प को आने नहीं दे, दे दो, वापस आवे तो दिल में नहीं रखना, फिर वापस कर देना, बाप दादा चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा जो सोचे वो करके देगा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा तो आज हर बच्चे को देख जैसे बाप दादा ने दो बातें पहले ही अटेंशन में दिलाई है, क्योंकि संगम समय अचानक समाप्त होना है। एक

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी होते भी नेचुरल नेचर दे अब मानी की रही, चाहे बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी है, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे वो जिम्मेवारी क्या लगती है? कोई भी जिम्मेवारी है, मानो सोन की जिम्मेवारी या कोई ऑफिशियल यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी है, लेकिन वो जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा के आगे क्या है? ब्रह्मा बाप शिव बाबा के मदद से प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावन हार करा रहे हैं हम, करनहार पर बाप समान न्यारे और प्यारे, बाप समान बनने चाहते तो ये चेक करो, कुछ भी चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कपड़ा ड्यूटीज

0: Naranaharu, Trusteo, Karavanar, Malik, Shibaba. Ye Karavanar ka paat. Chalte chalte, bhul jate.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते हैं? सिर्फ सोचते हैं, बस बिंदु सामने आ जाए, बिंदु बिंदु बिंदु, और बिंदु खिसक जाती है। बिंदु तो है लेकिन कौन सी
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Jesse Sainz. Peace.

Chador. Fellow. जवाब की प्रकृति सूर्य की शक्ति सूर्य की किरणाएं से

Jesse.

sit up.

0: llegaron.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Sir.

0: के आधार से स्पीकर बनाने चाहते हैं। आप जो भाषण करो उसके साथ ऐसे अनुभवी आत्माएं अनुभव सुनाए तो प्रभाव पड़ता है। तो अभी ये सेवा करना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सेवा में नवीनता क्या लाएं, जो अभी तक सेवाएं चली हैं उसके अलावा आप नयापन क्या लाएं?
2: नयापन ये लाओ जो आने वाली है और लोगों नजदीक कम से कम स्टूडेंट तो बने, कभी कभी आने वाले संपर्क खुद बनावे, दिलो वे ऐसी रिजल्ट आने वालों की होनी चाहिए। अभी आए अच्छा है, अच्छा है चले जाते।
1: इस संदेश तो बहुत मिल गया सबको, बहुत जा भी रहा है और मिल भी गया।
2: अभी नजदीक आना, कम से कम स्टूडेंट नहीं बने लेकिन आने वाले मिलने वाले सुनने वाले तो बने, कम से कम बोलने तो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब माया को चैलेंज किया तो ये समस्याएं, ये बातें, ये हलचल माया की तो रायल रूप है। माया और तो कोई रूप में आएगी नहीं, इन रूपों में माया जीत बनना है। बात नहीं बदलेंगे, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेंगी, हमें बदलना है। स्लोगन तो आपका बहुत अच्छा सबको लगता है, आप बदल के दिखाना है। बदला नहीं लेना है, बदलना पुराना स्लोगन है ये तो। नए नए रूप, रायल रूप बन के माया और भी आने वाली है, घबराओ नहीं।

0: Sí.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: एक वाणी, दूसरा स्वर, शक्तिशाली स्थिति और तीसरा श्रेष्ठ से बोलते वाइब्रेशन ऐसा होता जो भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता। ऐसे शक्तिशाली हो वाइब्रेशन में

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

amica. Some.

Schnee.

exercise.

6. Si cara. Sarétenme. En Bajro Poki. Exercise.

Jason Watney. Exactly.

0: Mann. Exercise. Sada. Tigring. Jesse. शरीर की एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त रखती है। ऐसे ये एक्सरसाइज
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: विश्व कल्याणकारी की स्टेज है सदा बेहद की वृद्धियों
2: व्यक्ति ऐसा है।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: समझते

Somebody.

0: dich bei dir. Mira Sanskar.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जो भी निमित्त बने हुए हैं उन्हों को आजकल के वायुमंडल पर स्वयं तो संतुष्ट रहना ही है, लेकिन संतुष्ट करना भी है। असंतुष्टता का वायुमंडल में प्रभाव नहीं। आजकल संतुष्टता सबको चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं है, इसलिए बीच बीच में कुछ न कुछ ऐसा परवश होके कर लेते हैं। कुछ सिक्किया, कुछ किमिया, कुछ रैम, कुछ आत्मक सने उसकी आवश्यकता है। वायुमंडल में मेजॉरिटी को बैलेंस रखना नहीं आता, बैलेंस से सिक्किया भी हो और फिर साथ साथ उनको हिम्मत भी दो। सिर्फ सिक्किया से अभी सभी सिक्किया बन गए हैं, इसलिए सिक्किया के साथ हिम्मत और सने दिल का बाहर का नहीं, लेकिन दिल का सने दोनों का बैलेंस रख करके देना। और ऐसे प्लान बनाओ ऐसा प्लान चलता रहे, जैसे समय पर समय पट्टियां चलाते हैं ना, वो तो चलाते ही हो, लेकिन छोटा मोटा प्रोग्राम ऐसे विधि निकालो जिससे चारों ओर का वायुमंडल शक्तिशाली बने। चाहे ना है लेकिन हिम्मत कम है, उसमें मिलके कोई ना कोई अरमास के लिए ऐसा वर्क निकालो जो सभी बिजी हो जाए उसमें, रिजल्ट आती रहे। और चीकिंग भी हो, अगर नहीं करते हैं तो क्यों? अलबेलापन है तो उनके ऊपर सने से सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि समय तीव्रता से समय पारा तो ऐसा कोई प्लान बनो, कोई ना कोई वर्क निकाल के सबको बिजी रखो उसमें। ठीक है,
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: शिवा जो स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो शिवा नहीं, वो स्वार्थ है। एकदम न्यारी और प्यारी बन कर स्वार्थ से न्यारी और सर्व के संबंध में प्यारे चारों और Inch.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कुछ भी हो, पाप साथ है, मोचने की क्या बात है, कंफ्यूज होने की क्या बात है, पाप का साथ का सहयोग लो। अकेले समझते हो ना, तो मौज के बजाय मौज जाते हो, मौज ना दे, ठीक है ना? अभी भी मौजेंगे, नहीं मौजेंगे क्या? अभी नहीं मौज रहे है सिद्धी, अभी मौज में हो, इसलिए कुछ भी हो जाए लेकिन मौज नहीं जाए, ठीक है ना? कि मौज चली जाएंगी, मौज नहीं जानी चाहिए। सेवा का बल है तो उस बल को कार्य में लगाओ। सिर्फ सेवा नहीं करो लेकिन सेवा का बल जो पाप से मिलता है उसको काम में लगा। सिर्फ सेवा कर रही है, सेवा कर रही है तो थक जाते हो, मौज भी जाते हो, लेकिन पाप के साथ का अनुभव जहाँ पाप है वहां मौज ही मौज। उस साथ को इमर्ज करो, सुनाया ना? याद करते हो लेकिन साथ को चूज नहीं करते, इसीलिए मौज जाते। संगम युग मौजों का

रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कभी कभी लिफ्ता बन जाए, ये हो ये करे ये मदद दे ये बदले तो मैं बदलूं, ये बात ठीक हो तो मैं ठीक हूँ, ये लेवतापन दातापन नहीं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कई बच्चे सोचते

0: Rosa, si bajaste de ti, pero mamá va a matarme que agarte. Lejen, papu que te Jesse Sakar Rupa me Sada bacho ke saath rahe Aise Vatan me bhi Rehte के बिना बाप को भी मजा नहीं आता, जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सोचता नहीं। ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना और कुछ नहीं सोचता, अकेले नहीं रहते, साथ में रहते, साकार में तो साथ कान बहु साकार रूप में थोड़े पंजे कर सकते थे, अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहे जब चाहे साथ निभाती रहती, जैसे चित्रों में दिखाती है ना, एक एक कॉपी के साथ उन्होंने कृष्ण को दिखा दिया, लेकिन ये इस समय का गायन है। अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जब चाहे, चाहे रात को 2 बजे या 2:30 बजे, किसी भी टाइम साथ निभाती रहती, साकार में तो सेंटर्स पर चक्कर लगाना कभी कभी होता, लेकिन अब अव्यक्त रूप में तो पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते, बाप को काम ही क्या है, बच्चों को समान बना के साथ το χαμένα. Όρκε. Το εσύ με είπες η Ρέτη.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जो भी, जितने भी आपके सेवा साथी सिक्किया भी देते हो तो सिक्किया के साथ सने भी देना, जिससे वो सने के आधार से अपने को आगे बढ़ा सके। ऐसा सने नहीं देना जो वो सने का लाभ उठावे, जो भी करो बाफिर ऐसा सने नहीं देना बाप दादा खुश है छोटे मित बने हैं, अटेंशन देते भी हैं, लेकिन और अटेंशन देंगे संतुष्ट भी करो और विश्व को संतुष्टि का किरणाएं पहुंचे, ये भी कार्य निमित्त वालों को करना है। उसका कारण कि जो निमित्त है अपने हैंड्स के संस्कार परिवर्तन कराने में थोड़ी मेहनत करनी पड़े। सेवा कराते हो, रहने खाने का प्रबंध मेजॉरिटी सेंटर देती, लेकिन औरों में शक्ति ऐसी बढ़ो जो बाप से शक्ति ले आपके सेवा स्थान का वायुमंडल ऐसा बनाए जो भी आवे वो पहले तो वायुमंडल के आकर्षण में आ जाए। क्योंकि आजकल सब यही चाहते हैं कि ऐसे कोई कार्य हो जो आने से ही अनुभव हो कुछ, देखने से ही अनुभव। को और पावरफुल बनो। जिसको देखे लोग शिकल से वाइब्रेशन से जान जाती है आजकल, क्योंकि आसुरी शक्ति का भी प्रभाव लोगों के बुद्धि में है, नॉलेज का भी प्रभाव है। जो भी मीटिंग में आए हो हर एक जिम्मेवार

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Sí.

समय ये अटे

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बच्चे ओले ना देते हैं कि कभी कभी जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता होती है वो समय पर नहीं आती। लेकिन इसका कारण क्या? सर्वशक्ति आती, लेकिन उसका आर्डर कोई मानता है? तो जिस समय शक्ति नहीं आती है उसका कारण है कि आप अपने मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर सेट नहीं होते। इसीलिए बिना सीट के ऑर्डर कोई नहीं मानता। तो सदा अपने सीट पर सेट रहो। कभी फेस्ट तार्स चलते हैं वह कभी टेंशन आता है, तो सही स्वमान

भेद नहीं होते हैं, तो जहाँ स्वमान नहीं वहाँ क्या होता?

0: tu sua mane jato teban. Tu teban che sitbar arder garenge tu
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बच्चों की छोटी सी बात भी होगी ना तो अवस्था नीचे ऊपर हो जाती, दिल खुश, चेहरा खुश,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

Tiamat.

సంతోషమడినా. Oh.

Ciao.

शक्ति।

जो संतुष्ट रहते हैं उसका

our son.

Money Blister.

इसलिए

0: वचन अद्भुत।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: प्रदर्शन नहीं करना, अपने को ही देखना। कई बच्चे रोडियन करते हैं ना, कहते हैं बस ये थोड़ा सा उसको ठीक कर दो फिर मैं ठीक हो जाऊंगा, ये थोड़ा बदली कर दो मैं भी बदली हो जाऊंगा। लेकिन न वो बदलेगा न आप बदलेंगे, स्वयं को बदलेंगे तो वो भी बदल जाएगा। कोई भी आधार नहीं रखो, ये हो तो ये हो, मुझे करना ही है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Sad.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा को बच्चों का पुकारना, चिल्लाना सहन नहीं होता।

साथ में करो कि चलते फिरते अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। ये संकल्प ले सकते हो जैसे ये संकल्प लिया तो संस्कार को समाप्त करेंगे सदा के लिए। सदा के लिए लिए है ना, थोड़े समय के लिए तो नहीं। तो जैसे संस्कार को समाप्त कर पाप समान बनेंगे, ऐसे दाता के बच्चे बन मास्टर दाता स्वरूप से मनसा सेवा भी करनी है। सारे दिन में जो भी टाइम मिले उसमें मनसा सेवा जरूर करना, क्योंकि इसी सेवा के लिए राइट हैंड बनाए। हाथ से दिया जाता है ना तो आप बाप के राइट हैंड है, तो बाप दादा आप राइट हैंड
Fordanse Raja.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: से सोडियम रूप है, वाइब्रेशन के रूप में रह जाता है। फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर, समाने की शक्ति नेगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर समाओ, नेगेटिव ही नहीं समा दो, पॉजिटिव में चेंज करके समाओ, तब नई सदी में नवीनता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: Charles Payne y Materna. हर एक टीचर से बाप ये चाहता है कि हर एक के फ्यूचर से फ्यूचर दिखाई दे। नियमित टीचर्स को बाप दादा के छोटे छोटे बच्चों को बोर्डिंग में यही सिखा दी, खुश दिमाग और खुश किस्मत। हर एक का चेहरा ऐसे हो तो अभी भी अच्छी की उसका सर्टिफिकेट तो है, लेकिन अभी अपने चेहरे और चलन से चेहरा देख करके सब अनुभव करते हैं आज इसको कुछ मिला है। ऐसे ही आपके चलन और चेहरे से
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: इस सीजन में आप दादा टीचर्स को विशेष उठाने चाहते हैं। सब टीचर्स उठो, दिल्ली वालों का पीछे देखो कितने टीचर्स। चौथा हाल तो टीचर्स है,
2: 2000 टीचर्स आई है। 21,000 भाई बहने आए हैं, 2000 टीचर्स आई।
1: टीचर्स को सा

morning, teacher. Genesis. Say it.

0: ये पर्द कहता करती है ना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: Pocioka, Rika, Janam Siddhant Khan, usko use karo. Allah pehle nahi ban. Ho jayenga, kar lenge, ye nahi socho.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आजकल चाय संसार में, चाय भ्रमण संसार में हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार, मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं, एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत, मानो 95% किसने संस्कार के वश परवश होके नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसकी 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, ये बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी ये ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगे ये क्यों किया, ऐसा तो नहीं किया जाता है, ये नहीं करना होता है, पहले ही बेचारा संस्कार के वश है, कमजोर है, तो वो नर्वस हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ, ये बात बहुत अच्छी है आप में, ये आप बहुत अच्छा कर सकते। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात देंगे तो वो परिवर्तन हो जाएगा। हिम्मत दो, परवस आत्मा में हिम्मत नहीं होती। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया, आपकी कमी सुनाई, आप भिखारी हो, आप गंदे हो, आप ये हो का, आपको स्मृति दिलाई, आप आत्मा हो, और इस श्रेष्ठ स्मृति से आप में समृद्धि आई, परिवर्तन किया। हिम्मत से समृद्धि दिलाओ, समृद्धि समृद्धि सुते ही दिलाएंगे, समझा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी का वेस्ट संकल्प, सारे दिन में बीच बीच में चलता है वेस्ट।
4: Yep.

sabio.

0: son mantune. Mocita tabana. Shiva Shakti pano sena. Espero que tata tata cabile tata yota apane frente or triste.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सभी खुश राजी और कदम आगे बढ़ाने वाले बने फर्क है, लेकिन

एक बच्चे को देख क्या कर रहे थे।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने देखा है सेवा की रुचि, सेवा का उमंग उत्साह अभी भी बच्चों में है। अच्छी सेवा के समाचार भी बाप दादा सुनते हैं, लेकिन बाप दादा तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाते हैं कि सिर्फ एक वाचा की सेवा नहीं, सेवा करते हो तो एक ही समय पर तीन सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो और कल्पना अर्थात अपने संपर्क द्वारा संबंध द्वारा चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। एक समय में तीन सेवा इकट्ठी करो, क्योंकि अभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती है कुछ फर्क हो, कुछ बदलना चाहिए। तो एक समय पर तीनों सेवा कर सकते हो, कर सकते हो। चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सर्विस करते उस समय मनसा द्वारा और कल्पना अर्थात संपर्क संबंध द्वारा भी सेवा हो रही है, होती है साथ साथ।

0: ऐसा फोर्स का कोर्स कराओ जो वो आत्माएं बाप के सिर्फ सनेही सहयोगी नहीं बने, लेकिन हर श्रीमत को पालन करने वाली फोर्स सर्व फोर्स पढ़ने वाली आत्मा बने, समीप का रतन बने। ये हो सकता है अभी फोर्स का कोर्स करो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सोचो, आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनालिटी और रियलिटी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो,
2: सुंड वाला ने
1: पर्सनालिटी है, मूर्ति होंगी 4 फुट 5 फुट की, और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं, ये रॉयल्टी और पर्सनालिटी। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बोता बना के रख देंगे। क्या भी होता रहे, और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है ना, बढ़िया कुमारिया।

0: जीवन का चित्रकार कौन? कौन? स्वयं भाव ब्रह्मा जीवन की पर्सनल
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाने गए, क्या देखने गए कि बाप दादा ने स्वमानों की बहुत बड़ी माला दी। अगर एक एक स्वमान में स्थित होके उस स्थिति में बैठो चलो तो स्वमान कहती जाओ और माला घुमाते जाओ तो बहुत मजा आएगा। स्वमान की लिस्ट रखी है लेकिन एक एक स्वमान कितना बड़ा है और किसने दिया है। वर्ल्ड आलमाइटी अथॉरिटी ने एक एक बच्चे को अनेक स्वमानों की लिस्ट दी, उसको यूज करो क्योंकि और कोई अथॉरिटी नहीं जो इस स्वमान को आपके कम कर सके और किसी को भी इतने स्वमानों की माला नहीं मिली। तो बाप दादा ने देखा सत्ययुग में तो राजभाग मिलेगा लेकिन ये स्वमानों की माला संगम युग की देन। बाप दादा जब भी बच्चों को देखते हैं तो हर एक बच्चों के स्वमान के स्थिति से देखते हैं। वाह बच्चा वाह, तो स्वमान के अथॉरिटी में रहो। मैं कौन, कभी कौन सा स्वमान सामने रखो, कभी कौन सा स्वमान सामने रखो और चेक करो तो आज अमृत वेले जो विशेष स्वमान बुद्धि में रखा उस स्वमान खजाना है ना, इसको यूज किया क्योंकि खजाना भरने का साधन है। जितना खजाने को कार्य में लगाएंगे उतना खजाना बढ़ता है। तो आज बाप दादा देख रहे थे कौन कौन बच्चा है, किसके पास स्वमान की स्मृति की माला बड़ी थी, किसके पास छोटी। जहां स्वमान होगा वहां देवान खत्म हो जाता। तो आज बाप दादा ने चक्कर लगाया और देखा जैसे स्वमान का खजाना है ऐसे एक एक शक्ति एक एक गुण इस्तेमाल करो, उसको कार्य में लगाओ तो ये जो प्रॉब्लम होती है माया आ गई। माया आ नहीं जाती लेकिन माया ने बाप को सुना है कि मेरे को आह्वान करते है तब जाती हूँ, ऐसे नहीं जाती। कोई भी हल्का संकल्प करते है माना माया को आह्वान किया, शक्तियों को छोड़ता है तो माया को तो माया बलवान हुई आप, तो आज पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है, नए वर्ष में नया उमंग, नया उत्साह, योग संगम युग का गायन है। एक एक दिन दिन उत्साह भरा हुआ है, अर्थात उत्सव तो उमंग उत्साह है, तो हर दिन उत्साह।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। सारे दिन में ये ड्रिल करो, मन की ड्रिल, शरीर की ड्रिल, तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते हो करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वो तो करो और खूब करो, टाइम पर सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना, कि टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज

स्टेज पर स्थित हो जाओ, बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान कार्य करते फ्रिश्ते।

Sí.

0: us?
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

पहुंच गए।

Max.

याद करने में

0: सकते। आप सबका एक गीत है, न इतने तारे है न सागर में जल,
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
2: रोम रोम में राम रमे थे रामा नाम तुम्हारा, रोम रोम में राम रमे थे रामा नाम तुम्हारा, सबका रिश्ता प्रभु से जुटाना यही था काम तुम्हारा। मन से मन की तार मिली थी बाबा बाबा कहती, दिलाराम बाबा का दादी, दिल था धाम तुम्हारा, दिल था धाम तुम्हारा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कई बच्चे ये भी बाप दादा से रोरियां करते कि बाबा आपने हमें सर्वशक्तिवान बनाया, शक्तिवान भी नहीं सर्वशक्तिवान का वरदान हर एक बच्चे को ब्रह्मण जन्म लेते हुए दिए, याद है अपने जन्म का वरदान हर एक बच्चे को बाप ने मास्टर शक्तिवान भव का वरदान दिया। किसने वरदान दिया? ऑलमाइटी अथॉरिटी ने। लेकिन कंप्लेन करते हैं कि जिस समय जो शक्ति चाहिए वो आती नहीं है, ऑर्डर नहीं मानती। वो क्यों? जब ऑलमाइटी अथॉरिटी का वरदान है उससे बड़ा कोई नहीं, तो वरदान के स्थिति में स्थित रह करके अगर आर्डर करो तो हो नहीं सकता कि आप आर्डर करो और शक्ति नहीं माने। एक तो आत्मा मालिक है सर्वशक्तिवान का वरदान मिला हुआ है, उस स्वरूप में स्थित होके मालिकों वरदान दोनों स्वरूप की समृद्धि के स्थिति में रह के आर्डर करो। शक्ति आपका नहीं माने असंभव, क्योंकि वरदान और बाप के प्रॉपर्टी का अधिकार संगम युग पर आप सबको सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला है। सिर्फ उस स्थिति में स्थित नहीं रहते, सदा नहीं रहते, कभी कभी आ जाते। ये कभी शब्द अपने ब्रह्मांड डिक्शनरी से निकाल दो। अभी अभी हाजिर आप कहते हो ना कि बाबा आपको अब याद करते हैं तो आप हाजिर हो जाते हैं। अनुभव हाथ उठाओ, अनुभव है अभी देखो हाथ तो उठा रहे हो। बाप हाजिर हो जाता, हसूर हाजिर हो जाता, तो ये शक्ति क्या है? ये शक्तियां भी आपको बाप के प्रॉपर्टी में मिली है, तो मालिक बन के आर्डर करो। हो जाती है ना, तो उसी स्थिति में रहते हुए ऑर्डर करते हो, तो मालिक ही नहीं है, ऑर्डर क्यों माने।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: हर पल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ, हर संकल्प में
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने देखा कि सेवा व कर्म और स्वपुरुषार्थ अर्थात योग तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो, वो कौन सा? पाप करा वन हार है और मैं आत्मा, मैं फलानी वाला अवश्य

0: और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं है। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी जो भी आए हैं, बाप दादा को एक एक बच्चा प्यारा, क्यों कैसा भी है।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कुछ कपड़े लिख

0: आशिक बनना है, फिर ओके करने को लंबी कथा नहीं लिखना, ये हुआ इसने ये कहा उसने ये कहा, ये रहा मेरा और उनकी कथा है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कोई भी धर्म रहना नहीं चाहिए, संदेश देना चाहिए और फॉरेन की सेवा ऐसे ही भारत में भी, विदेश में भी, कोई भी चाहे शाखा है लेकिन संदेश जरूर पहुंचना चाहिए। पास

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: What's up?